0: फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलीलें जाहिर देकर भेजा।
1: इला फिरऔन व मलाइहि फस्तकबरु व कानू कौमन आलीन,
0: यानी फिरऔन और उसकी जमात की तरफ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे।
1: फकालू अनुमिनु लिबशरैन मिथलिना व कौमुहुमा लना आबिदून,
0: कहने लगे कि क्या हम उन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए और उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं।
1: फकद्दबूहुमा फकानू मिनल मुहलकीन,
0: तो उन लोगों ने उनकी तकजीब की सो आखिर हलाक कर दिए गए।
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ,
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔
1: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ

0: और जो दे सकते हैं देते हैं, और उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है।
1: उलाइक युसारिउन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून,
0: यही लोग नेकियों में जल्दी करते और यही उनके लिए आगे निकल जाते हैं।

क्या ये कहते हैं कि इसे सौदा है? नहीं, बल्कि वो उनके पास हक को लेकर आए हैं और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं।

ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरजख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे।

0: फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे।
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: तो जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे वो फलाह पाने वाले हैं।
1: وَمَنْ خَفَّتْ

और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है।

मोमिनों अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो।

अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीजगी की बात है, और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है।

हाँ अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो खुदा को सब मालूम है।

होने दें और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारें कि झनकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनों, सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ।

0: वो कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात शायन न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे।
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6 रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए एफएम 92.6।
1: सूफी सिंग्स हु दैट व्हिच इज दैट व्हिच वाज दैट व्हिच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।

0: किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगाम मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।
1: लाहौर नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation. डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ताबून से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are live now.
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से नाराजगी की वजह पूछे तो टाल मटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
3: लेट्स गेट स्ट्रेस फ्री, ट्यून इन टू FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید کرار حیدر. میرا تعلق فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے. ہم فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت مختلف پروگرام کریں گے، جن میں ہم جو 7 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تعارف کروائیں گے. اور آج کے ہمارے پروگرام میں جن لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کا تعلق ہے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماریا ہارس، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد منظور ساجد. سو سامعین، بغیر کسی توقف کے، بغیر وقت ضائع کیے ہوئے، میں فوری بڑھوں گا آج کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف. اور میں ابتدا میں میم ماریا ہارس سے استدعا کروں گا کہ بتائیے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں. اوور ٹو میم ماریا ہارس.
5: Thank you so much, sir, for inviting us as a guest and giving us an opportunity to discuss and introduce our department, Food Science and Technology. Assalamu alaikum, listeners. I am Maria Harris, a lecturer in the Department of Food Science and Technology at University of Central Punjab, Lahore. It is an honor to be here to introduce our department, Food Science and Technology, and highlight academic programs which we are offering in our department, and also some exciting updates for the coming semester. Sir, basically we are offering 7 programs in our department. Jisme aata hai BS Food Science and Technology. Jab 2018 mein our department start hua tha, to sabse pehle humne yahi degree introduce karayi thi, BS Food Science and Technology. Phir uske baad upgrade hota gaya, of course, to usme humne add kiya MS Food Technology. Mein hamara batch pass out hua, phir humne PhD Food Technology introduce karwaya. Recently last semester mein humne offer kiya MS Food Safety and Quality Management. پھر لاسٹ ایئر وی اسٹارٹیڈ آفرنگ بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اس فیلڈ کی. پھر اس کے بعد اب ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور وی آر اسٹارٹنگ ٹو آفر دا پروگرام ایم ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ان کمنگ سیمسٹر. سر، ہمارا جو مین مشن ہے دیٹ از ٹو امپاور دا اسٹوڈنٹس ود دا نیسیسری نالج اینڈ اسکلز ریلیٹڈ ٹو فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن، ٹو امپاور دیم اور جسٹ ٹو میک شیور دیٹ دے آر ایکسیلنگ ان دیئر فیلڈ، پرٹیکولرلی ان اکیڈیمیا، ان ریسرچ اینڈ فوڈ انڈسٹریز. دیٹس آل اباؤٹ آر ڈپارٹمنٹ.
4: Thank you very much, madam. You gave a very detailed overview of all what is happening in your department. Now we have with us Dr. Muhammad Sajid Manzoor. Now I'll be shifting to him and asking him a question that is related to the faculty members who are the members of his department. Dr. Sahab, main aapse ye chahunga ki aap bataiye ki aapke department mein جو مختلف اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کا مختصراً تعارف کروائیے گا.
6: جی السلام علیکم. جی تھینک یو سر، تھینک یو فار انوائٹنگ اس. ڈاکٹر محمد ساجد منظور اس ٹائم آپ کے ساتھ ہیں. سو جس طرح سے مس ماریا ہارس نے ڈپارٹمنٹ کا اوور ویو آپ کو دیا، اور 2018 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا، और स्टूडेंट्स नो डाउट तलबा जो होते हैं वो मेन स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी एकेडमिया के, बट उनको लेके चलने वाले, उनको ज़िंदगी में किसी पोजीशन पे पहुंचाने वाले, उनका बैकएंड पे बैकबोन उसातसा होते हैं उनके पेरेंट्स के साथ। तो हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में हाईली क्वालिफाइड और वेल टैलेंटेड उसातसा हैं, उसातसा की टीम है हमारे, हम जो हम 14 उसातसा पे मुश्तमिल है जिसमें से 6 जो हैं वो PhD होल्डर्स हैं और 8 जो हैं वो हमारे पास MS क्वालिफाइड उसातसा हैं। PhD होल्डर्स जो हैं हमारे पास वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड हैं और दे आर आल्सो क्वालिफाइड फ्रॉम चाइना एंड मोस्ट ऑफ अस आर हैव रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम USA डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। हमारे जो HOD हैं वो डॉक्टर कंजा अजीज़ावान हैं, उसके बाद हम 5 जो उनके साथ हैं PhD क्वालिफाइड हैं जिनमें से एक जो है वो जिनकी डिग्री जो है वो चाइना से है। मेरा अपना रिसर्च एक्सपीरियंस सेल कल्चर एनालिसिस पे USA से वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से है। हमारे पास एक PhD होल्डर हैं डॉक्टर अख्तर सुरानी जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से है। हमारे पास डॉक्टर अमल शोकत हैं जो सरगोधा से क्वालिफाइड हैं। डॉक्टर आयशा मुर्तज़ा जो हैं वो चाइना से PhD होल्डर्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास बंच ऑफ फ्लावर्स है। हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से टीचर्स हैं जिन जो अपनी डाइटेटिक्स और क्लिनिक्स भी चला रहे हैं और एज अ प्रोफेशनल डाइटिशियंस भी हैं। तो जिस तरह से मैडम ने आपको बताया कि हमारा जो एक डिपार्टमेंट है वो बंच ऑफ फ्लावर है, वी आर ऑल डीलिंग विद फूड एंड न्यूट्रिशन, जहाँ पे जब पे भी खुराक की बात होगी तो गजाइत के साथ न्यूट्रिशन की बात ज़रूर होगी। तो हमारा जो विजन है वो फूड एंड न्यूट्रिशन को लेके उसको उसमें एडवांसमेंट है और उसको बच्चों में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी आर कंटिन्यूसली फाइंडिंग आउट डिफरेंट स्किल ओरिएंटेड टेक्निक्स, डिफरेंट स्किल ओरिएंटेड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज जो हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और बच्चों को कैपेबल बना रहे हैं कि बच्चे अपने फील्ड में जाके एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ कर सकें।
4: डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील के साथ अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया। अब मैं दोबारा पूछूंगा मैम मारिया से, मैम ये बताइएगा एक लफ्ज़ आपने बोला जो है डाइटेटिक्स, इसके बारे में बताइएगा हमारे सुनने वालों को ये क्या होता है और आसान लफ्जों में बताइएगा ताकि सुनने वालों तक सही मानों में इसका माने पहुँच सके।
5: थैंक यू सर। जी सर, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है डाइटेटिक्स, जिससे मिलके ही हमारी डिग्री बनी हुई है BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। सर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो आता है हमारा खाना पीना जो हम हर वक्त खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा, हमारा लंच, हमारा डिनर, हमारे स्नैक्स, वो हमारे हैं न्यूट्रिशन। अब सर वो न्यूट्रिशन किस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, उसने किस तरह से आपके सेल्स को मैसेजेस जाके दिए हैं, वो न्यूट्रिशन कैसे अब्सॉर्ब हुई है, कैसे उसका डाइजेशन हुआ है, हमारा स्टमक किस तरह से डाइजेशन में इन्वॉल्व रहा, फिर हमारी इंटेस्टाइन ने उसको कैसे फूड को डाइजेस्ट किया और फिर हमारे लिवर ने उसको कैसे मेटाबोलाइज किया, ये सर जो हमारे बॉडी की कहानी है ना, जो हमारे अंदर की कहानी है। एक दफ़ा हमने खाना खा लिया उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं ना उसको हम कलेक्टिवली डाइटेटिक्स के अंडर रखते हैं, तो दैट इज़ दी डाइटेटिक। और न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम सिर्फ खाना खा के ये भूल नहीं जाना कि वो खाना कहाँ पे गया, वो सारी आगे न्यूट्रिशन की साइंस कि उसने किस तरह से एक इंडिविजुअल को हेल्प किया ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारे सेल्स को, फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उस न्यूट्रिशन ने किस तरह से हेल्प की, दैट कम्स अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ डाइटेटिक्स।
4: बहुत शुक्रिया मैम। मुझे सामीन, अब हम एक वक्फे की तरफ बढ़े हैं, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: असलियत को भगा दो।
1: सामीन, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश कि आप UCP 92.6 UCP की दुनिया सुन रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद और मिस मारिया। अब मैं डॉक्टर साजिद की तरफ बढ़ूंगा, और डॉक्टर बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में आजकल चूँकि एडमिशन्स की हालत बहुत पतली है, आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन्स का क्या आलम है, और आप अपने स्टूडेंट्स को क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हैं जो कि बच्चे आपके डिपार्टमेंट में आते चले जाते हैं?
2: जी सर, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, जिस तरह से आपने एडमिशन्स की बात की, तो एडमिशन का सिनेरियो इस तरह से ही है, और बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और इस तरफ जब मूव कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल माशाल्लाह बड़े यू कैन से लिंक्ड हैं सोशल मीडिया के साथ, सारी चीज़ों के साथ, और बच्चों AI का दौर चल रहा है, तो वो बच्चे हर चीज़ से उससे लिंक्ड हैं, किस तरह से जो है वो अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, तो हम इसी तरफ मूव कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है कि बच्चे कुछ भी इस तरह का स्किल आए कि बच्चे उसके तो लेके और फिर आगे जाके खुद कुछ कर सकें और उससे अर्निंग का सोर्स बन सके। तो सबसे पहले तो ये करिकुलम के अंदर हम AI रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं और वो लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं। दूसरे, उसके बाद हमारे पास, जिस तरह से आप जानते हैं कि फूड स्टार्टअप, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर जो है, हमारे पास हमारी एक यूनिक स्ट्रेंथ थी, और वो मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता भी है, और हम बट हमारा जो है वो ऑरिक जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसको लेके चलता है, और बच्चों को फैसिलिटेट भी किया जाता है, बच्चों को इवन के उसमें हम बजट और फंडिंग भी देते हैं फूड स्टार्टअप के लिए। और उसके अलावा जो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ आवर फूड प्रोसेसिंग हॉल, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी हमारे कंपेटिटर में किसी के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास है, हमारे जो मदर इंस्टीट्यूट है NIFSET, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी UAF फैसलाबाद, उनके पास फूड प्रोसेसिंग हॉल है। तो हम फूड प्रोसेसिंग हॉल लॉन्च हमने कर दिया हुआ है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग लाइन्स हैं हमारे पास, बेकरी लाइन है जिसके अंदर सारे हम बेकरी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइन है जिसके अंदर स्क्वैश, जैम्स वगैरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास डेयरी लाइन है, उसके बाद हमारे पास कमर्शियल डिहाइड्रेटर पड़ा हुआ है, और ये हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए हुए हैं, और बच्चे इस टाइम पे अभी भी मैं प्रोसेसिंग हॉल से होके आ रहा हूँ, तो बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और बच्चे सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा न्यू यूनिक स्ट्रेंथ है कि हम एक छोटे फूड स्टार्टअप से लेके हम एक कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग हॉल की तरफ हम मूव कर चुके हैं, जो एक कमर्शलाइजेशन हमने सेंटर बनाया है जहाँ पे बच्चे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सिटी उन्हें फंडिंग देगी, पैकेजिंग में सपोर्ट करेगी, और उनके फंडिंग के साथ बच्चे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेल आउट होगा और यूनिवर्सिटी के बाहर भी सेल आउट होगा। उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम बच्चों को इस काबिल बना देते हैं कि बच्चे यहाँ से मूव करने के बाद अच्छी इंडस्ट्रीज़ में अप्रोच करते हैं, बच्चे हमारे बच्चे जो हैं अच्छी इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, बच्चे फूड अथॉरिटीज़ में जो चेक एंड बैलेंस अथॉरिटीज़ हैं उनमें जा चुके हैं, बच्चे डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मूव कर चुके हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने हम हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनका एक क्राइटेरिया है, वो जब भी किसी इंस्टीट्यूट को क्रेडिटेशन देते हैं तो वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई सोसाइटी या क्लब है जहाँ पे बच्चों को इस काबिल बनाया जा रहा है कि टीम वर्क बच्चों सीख सकें, बच्चे लीडरशिप सीख सकें, बच्चे दे कैन आल्सो इन्वॉल्व इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। नो डाउट एक एकेडेमिया जो होता है उसने बच्चों को डिग्रीज तो देनी ही देनी है, बट उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चों को पॉलिश करती हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट में फूड जंक्शन सोसाइटी जो है वो लॉन्च की हुई है, और ये सोसाइटी जो है ये अपनी मुनफरिद एक क्लब है जो पूरी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के और फैकल्टी के फंक्शंस जो है वो अरेंज करवाता है, डिफरेंट सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करवाता है, और बच्चे इसके अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह और लर्निंग सीखते हैं।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब मैं मिस मारे की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। मैम, मुझे आप ये बताइएगा, एक बड़ा मशहूर कॉल है कि शोहर को मती बनाने के लिए, उसको ताबे बनाने के लिए उसके पेट के रास्ते उस तक पहुंचा जाता है। मुझे आप ऐसी टेक्निक बताइए कि आपकी जो डिपार्टमेंट है ये एक हमारा ज़रिया बने हमारे तमाम पाकिस्तानियों के शिकम तक पहुँचने का, ताकि आपकी प्रोडक्ट्स में बाकी तमाम प्रोडक्ट्स को मात दे सकें।
3: जी सर, अभी रिसेंटली हमारा फूड इनोवेटिव कंपटीशन हुआ FIC, जो कि एक बड़े पैमाने पे होता है, हमारा बड़ा ग्रैंड इवेंट होता है जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक और इवन हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। सर, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इनोवेशन और कंपटीशन की वजह से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं और हमें यकीन मानिए सम टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमने खुद भी कभी नहीं देखे होते, बच्चे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं। और हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर चुकी है फॉर कमर्शलाइजेशन फूड। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे सर ने भी बताया, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग हॉल है जिसमें स्टूडेंट्स के पास हर वो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है, वो उनको इस्तेमाल करते हैं और जिस हद तक जाके वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आना चाहते हैं वो लेके आते हैं। और हमारे वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर इंडस्ट्रीज़ में भी सेलेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स जाते हैं, उनकी कमर्शलाइजेशन होती है, बच्चे अपनी रेसिपीज शेयर करते हैं। तो हमारा FIC होता है वो बड़े ग्रैंड पैमाने पे होता है, उसमें हमारे इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं जो एज अ जज फूड को सेलेक्ट करते हैं। सर रिसेंटली मुझे याद है कि हमारा FIC हुआ लास्ट मंथ, तो ऑरिक ने एक प्रोडक्ट चूज़ की और उनको 20,000 बच्चों को कैश मिला ऑन द स्पॉट। और इसी तरह फिर सेकंड विनर्स को भी 10,000 कैश दिया गया। फिर इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी उनको कैश दिए जाते हैं। अब हमने ये किया है कि जो बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें इनोवेशंस लेके आते हैं, बहुत यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट किया जाए और उसको कमर्शलाइजेशन के लिए रेडी किया जाए। और अभी जैसे सर ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग हॉल में बच्चे उसी पे काम कर रहे हैं, तो हमारी तो हर तरह से ये कोशिश है कि बच्चों को जिस हद तक उनको एम्पावर किया जाए कि वो अपनी इनोवेशंस को इस्तेमाल करते हुए, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए नई सी नई प्रोडक्ट्स बनाएं और ये जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान से इसको इरेडिकेट किया जाए। और उसके साथ साथ इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि हेल्दी हों ताकि हम मैल न्यूट्रिशन का भी साथ में खात्मा कर सकें।
1: हम फिर दोबारा एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: मोहतरम सुनने वालों, हम फिर आपको खुशामदीद कहते हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आखिरी जो मेरा हमारा जो हिस्सा है इस प्रोग्राम का, उसमें मैं चाहूँगा कि अपने मुअज्जिज मेहमानान से ये पूछूँ कि आप जो चीज़ें बनाते हैं, क्या इनकी आपने पैकेजिंग का भी कभी सुना? कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बड़ी दिलफरेब होनी चाहिए, दीदाजेब होनी चाहिए, नज़र को भली लगनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या सोचा? पहले मैं डॉक्टर साजिद से ये सवाल पूछूंगा।
4: जी सर, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बताया और डिग्री का इंट्रोडक्शन दिया, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिग्री है। इसके अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके उसके एनालिसिस से लेके फूड पैकेजिंग तक। तो फूड पैकेजिंग इज़ अ फुल कोर्स दैट इज़ टॉट इन वन सेमेस्टर। तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाया जाता है इसी परफॉर्मेंस के अंदर, कि बच्चे प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग भी डेवलप करते हैं। बच्चे पैकेजिंग खुद डेवलप कर रहे हैं अपनी, उसके ऊपर लेबलिंग कर रहे हैं। तो फूड लॉज एंड रेगुलेशन इज ऑल्सो अ कोर्स जिसके अंदर हम सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज का बताया जाता है, उसके अंदर फूड लेबलिंग का बताया जाता है। बच्चे उसको देखते हुए और इंटरनेशनल लेबलिंग और नेशनल लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए खुद लेबलिंग करते हैं। उसके अलावा हमारा ऑरिक, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑरिक इज ऑल्सो सपोर्टिंग आवर किड्स, आवर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग पैकेजिंग और इन बाइंग पैकेजिंग। तो वो सारा हमारा उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं।
3: मैं मारिया से पूछना चाहूँगा, मैं मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं इस मार्केट में इतनी कैलेसनेस है कि ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। तो आप के प्रोडक्ट में कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि कम्पीट भी कर सकें ऑलरेडी मौजूद प्रोडक्ट्स को और उनको नीचा भी दिखा सकें? कुछ ऐसे मुझे चीज़ें बताइएगा।
5: जी सर, जब हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि वो बजट फ्रेंडली हों और एक आम इंसान तक पहुंच सके। जैसे सर, बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन बच्चों में लैक कर रहा होता है, विटामिन डी, कैल्शियम, बच्चों को ड्यूरिंग लेक्चर ये चीज़ें हम बताते हैं कि आपने इन चीज़ों की, इन न्यूट्रिएंट्स की फोर्टिफिकेशन करनी है या इनरिचमेंट करके आपने अपनी प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना है और इस प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक आम इंसान तक पहुँच सके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो मेन मिशन ही यही है कि हमने फूड इनसिक्योरिटी का खात्मा करना है ताकि हर आम पाकिस्तानी के पास हमारा जो फूड है वो पहुंच सके। सर, जब भी हम न्यूट्रिशन लेबल पढ़ते हैं अक्सर फूड प्रोडक्ट्स का, तो उसमें एरर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन क्लासरूम। तो बच्चों को फिर बताया जाता है कि आपने कुछ भी न्यूट्रिएंट जो फूड के अंदर ऐड किया है उसको एक्यूरेटली लिखना है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर सर्विंग उसकी कैलोरीज कितनी है, और जो सूटेबल और परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो भी आपने वाजे तौर पे लिखना है। बच्चों को इसके साथ साथ गाइड भी किया जाता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई एलर्जन मौजूद है तो आपने उसको हाईलाइट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है तो आपने उसको भी हाईलाइट और क्लियर कट लिखना है कि दिस इज़ नॉट फॉर दैट फूड ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल दैट्स नॉट फॉर प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को क्लियर गाइडेंस दी जाती है। सर, जो हमारा FIC हुआ उस पर हमने का बच्चों को प्रॉपर हमने असेस किया कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। तो हमने देखा हमारे प्रोडक्ट्स, बच्चों ने प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स थे ऑन FIC, और उसके साथ साथ पैकेजिंग भी बच्चों की कमाल की थी। सर, अगर हम न्यूट्रिशन लेबल्स को देखें तो एज अ डाइटिशियन मैंने उन प्रोडक्ट्स को देखा, लेबल्स को देखा कि किस कहीं कोई एरर तो नहीं, बच्चों ने न्यूट्रिशन फैक्ट और उसके साथ साथ जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो भी एक्यूरेट लिखी हुई थी। तो हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो इसी चीज़ पे होता है कि बच्चे एक्यूरेट कंटेंट्स लिखें और खुद भी आगाही हो उनको और उनको पता हो कि हमारी डिमांड क्या है और हमने उसको किस तरह से मीट करना है।
3: बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतना अच्छा बताया। कम से कम ये मुझे आपका पहलू बहुत अच्छा लगा आपके डिपार्टमेंट का, कि एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी होती हैं लेबल के ऊपर, अक्सर लोगों की मिसलीडिंग होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल यही आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा मेरे नज़दीक। आखिर में मैं मैम से पूछना चाहूँगा, मिस मारिया से, कि यहाँ जो बच्चे आएंगे मैम, उनको यहाँ ऐसी क्या चीज़ स्पेशल मिलेगी जो कि बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगी?
5: थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। there are multiple reasons for choosing UCP for FST and HND. Kuch main usme se reasons highlight karungi, and I would love to highlight that ke sir hamare time pe jab main graduated hui thi to humne theoretical work hamara bahut zyada tha, lekin jo practical exposure tha wo hame bahut kam diya jata tha. Lekin ab jo hai humne cheeze kafi had tak modify kar di hain, cheeze kafi had tak upgrade hui hain. Jaise sir hamari abhi humne ek list banayi hai events ki jo ke for coming students ke liye humne plan kiya ke jab students hamare next semester start hoga to us में हम न्यूट्रिशन सिंपोजियम एंड गेस्ट लेक्चर्स रखेंगे. पहले भी होता आया है, मज़ीद हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं ताकि इंडस्ट्री में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आएं और इमर्जिंग ट्रेंड्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन और फूड साइंस बच्चों के साथ डिस्कस करें. मीनवाइल सर हम प्लान करें कि हम न्यूट्रिशनल केस स्टडी चैलेंज के नाम से एक इवेंट रखें. जिस तरह से हमारा FIC होता है जिसमें प्रोडक्ट बच्चे डेवलप करते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं वो रियल टाइम जो केस स्टडीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस कराएं और उन पे डाइटरी इनोवेशंस करके डाइट थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं कि किस तरह से वो मेडिकल प्रॉब्लम की न्यूट्रिशनल थेरेपी करेंगे. सर हमारे मल्टीपल प्लान्स हैं. हम चाहते हैं कि हमारे आप जो स्टूडेंट्स आएँ हम उनका इंटर यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशन क्विज कॉम्पिटिशन हो ताकि बच्चों को ज़्यादा से मेन हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें. बच्चे को पता हो कि अगर वो क्लास के अंदर न्यूट्रिशन असेसमेंट के नाम से कोई कोर्स पढ़ रहा है तो वो रियल टाइम हॉस्पिटल्स में जाके वार्ड्स में जाके पेशेंट की असेसमेंट किस तरह से करनी है. तो सर ये हमने अपने एकेडेमिया और करिकुलम के अंदर ये कंपल्सरी कर दिया है कि बच्चे थ्योरेटिकल वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़रूर लेंगे.
3: मैम बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रैक्टिकल वर्क का जिक्र किया. साइंस तो विदाउट लैब मुकम्मल नहीं होती. आखिर में डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साजिद से, कि बताइए कि आपकी लैब्स में क्या ऐसी चीज़ है जो इन लैब्स को दूसरी यूनिवर्सिटियों की लैब से मुमताज़ करती है.
4: जी सर, थैंक यू. इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा जो लास्ट वाला आपका एक क्वेश्चन था मिस मारिया आरिस से कि प्रोडक्ट्स हमारे क्यों डिफरेंट होंगे और किस तरह से वो हमारे मार्केट को कैच करेंगे, उसमें जस्ट मैं आपको जस्ट इसी से एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं जो हमारे लोकली इंग्रेडिएंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं और उनकी कॉस्ट उसी तरह से हमारी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाते हैं. जस्ट मैं एक उसमें एक एग्जाम्पल है, जिस तरह से ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट जो है उसका एक बड़ा चार्म है और जो अब भी आप मार्केट में विजिट करें या मॉल्स में विजिट करें तो आप शेल्फ्स पे उनको एक सेपरेट प्लेस पे देखते हैं और उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो एज एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और बड़ी हाई प्राइसेस होती हैं कंपेरेबल टू हमारे लोकल प्रोडक्ट्स. तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे लोकल इंग्रेडिएंट से इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को बीट कर रही हैं और वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. दूसरा आपका क्वेश्चन है जिस तरह से हमारे लैब और इक्विपमेंट के रिलेटेड, तो मैंने जिस तरह से आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्ड हैं और जिसमें हम बच्चों ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को उन पर इतनी हो कि बच्चे जब फील्ड में जाएं तो दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दे कैन ईजिली ज्वाइन रिसर्च डिपार्टमेंट, दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन अथॉरिटीज़. तो हमारे पास जिस तरह से अभी प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही है, हमारी फूड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन की डिग्रीज दोनों इस तरह से हम बच्चों को वेल इक्विप करते हैं कि बच्चों को दोनों डिग्रीज के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आए. न्यूट्रिशन में अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन क्लिनिक हम लॉन्च कर चुके हैं जिसके अंदर जो हमारे पास फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनके अपने क्लिनिक्स हैं तो यहाँ पे बच्चों को एज एन इंटर्न्स वो बच्चों को सिखाते हैं. दूसरी तरफ हम आएँ तो फूड डिपार्टमेंट में हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके एनालिसिस की तरफ बच्चों को हम लेके जाते हैं.
3: डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया. मौजूद सामईन, प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद मंजूर और मिस मारिया हारिस का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आके अपने डिपार्टमेंट को बड़े अहसन तरीके से तारुफ करवाया और प्रोग्राम को भी बड़े खूब तरीके से बयान किया. जब तक हम अगले प्रोग्राम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरी तरफ से यानी आपके आज के मेज़बान डॉक्टर सैयद करार हैदर की तरफ से आपकी आमद का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी.
4: थैंक यू.
3: और इसी के साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और देखिएगा किस तरीके से न्यूट्रिशन और डाइट टेक्टिक्स के बारे में उन्होंने हमें बताया. अपना बहुत ख्याल रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.0।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: लिसन, लर्न, डिस्कवर, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP के दिल में।

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCPK Duniya.
1: डेंगी मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगी के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
3: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Mach 2.6.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.
1: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन FM 92.6 UCB Dunia।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया, UCP की।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP ki duniya.
1: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वापस आया, मैं अपने वालिद को बताया कि जी डॉक्टर साहब ने ये बताया, तो माय फैमिली थॉट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इट अप. मैंने एक ना इमेजिनरी सी कोई चीज़ उनको बता रहा हूँ बिकॉज मैं अपने दादा के जो एक्शन था उनको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई दवा बीमारी होती नहीं है जिसका ना मैंने ये नाम सुना है ना ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज ना हो. तो ये यू नो ये हालात थे हमारे. फिर मैं कुछ अरसे बाद कुछ ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, तो वहाँ मैं आई वॉज वॉकिंग, तो मैंने अल्जाइमर्स का लफ्ज़ लिखा हुआ देखा. मैं वहाँ ठिटक गया एकदम, मैं कि तो वाकई वर्ड एग्जिस्ट करता है. आई वेंट इन साइड तो उन्होंने बताया कि वो अल्जाइमर सोसाइटी यूके का दफ्तर था. उन्होंने मुझे 5-6 कागज़ मुझे इन्फॉर्मेशन के दिए और उन्होंने वो कागज़ में लेके वापस पाकिस्तान आया. तो मैंने वो अपनी फैमिली का शेयर किया, तो पहली दफ़ा मेरी फैमिली ने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये इनके साथ हो रहा है. तो फिर मेरी वालदा ने क्या आई विल मेक श्योर कि इनकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस हो. मेरी बहन ने कहा मैं इनके कमरे का बहुत स्पेशल ख्याल रखूँगी और हर चीज़. तो वो 5-6 कागज़ों ने मैंने सोचा कि मेरे दादा का तो तमाम मसले मसाइल इन 5-6 कागज़ों के अंदर ही फंसे हुए थे. तो ये दैट एक्चुअली लेट मी टू, और उस ज़माने में मैं आई वॉज़ क्वाइट यंग और मैं काफ़ी वॉलंटियर काम करता था थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और चीज़ों के लिए. तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी फैमिली के साथ जो शहर में भी रहती है, एक्सेस का मसला भी नहीं है, रिसोर्सेज का मसला भी नहीं है और तालीम का मसला भी नहीं है, उसके साथ अगर ये हो रहा है तो जो बाकी लोग हैं जिनके पास ये सारी प्रिविलेजेस नहीं हैं तो उनके साथ क्या हो रहा होगा. तो ये दैट बेसिकली लेट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्जाइमर्स पाकिस्तान एंड दैट वाज वे बैक इन 2000.
1: राइट, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आपने फेस की जी, स्पेशली आपकी फैमिली ने. आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इतने हौसले से उनको ट्रीट किया और इतने अच्छे तरीके से उनको उनकी केयर की, जबकि आप जानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. और डेफिनेटली इट्स टफ के जब आपको आइडिया ना हो कि व्हाट यू आर डीलिंग विद. इट्स रियली ग्रेट एफर्ट सर. सर आपसे गुफ्तगू मजीद हम जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. हमारे यहाँ म्यूजिक का बंदोबस्त भी साथ साथ चलता रहता है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी. विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. सुनते रहिए यूसीपी की दुनिया FM 92.6.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हुसैन जाफरी से जो कि अल्जाइमर्स पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं एज जनरल सेक्रेटरी। तो सर हम बात कर रहे थे अल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर, तो इसकी प्रिवेलेंस पाकिस्तान में कितनी है, क्या बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल अभी उसमें है रेंज में?
2: जी जो पहले मैं आपको थोड़ा ग्लोबल थोड़ी सी फिगर्स बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि अमूमन 65 साल की उम्र जो है उसके बाद ये लोगों को होता है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एज कर गई हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। वहाँ अगर आप इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जापान में, अगर आप अल्जाइमर्स का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये वर्ड ऐसा ही लोगों के लिए फेमिलियर है जैसे जैसे कोई कोविड का नाम या ले या पोलियो का नाम ले, जिस तरह हम फेमिलियर हैं वो इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं, बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन एज कर गई हैं और जो एजिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो उनको होनी शुरू हो गई हैं। मुझे याद है जब हमने काम शुरू किया वे बैक 22 ईयर्स बैक, तो मुझे याद है हम सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए और उनसे जाके कहा कि जी ये एक मसला है और यू नो आपको इसको हमें कुछ लोगों के लिए सर्विसेज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, आपको आपको क्या पता कि हमारे क्या हेल्थ के क्या मसले मसाइल हैं। तो हमने कहा जी आपके क्या मसले मसाइल हैं? उन्होंने कहा जी मेरा मसला ये है कि 2.5 लाख बच्चे गंदा पानी पीने से मर जाते हैं हर साल, तो आपको बाबा बाबियों के पड़े हुए हैं, इनको इनके घर वाले देख लेंगे, आप छोड़ें इस बात को। तो मगर वो हम पॉपुलेशन हम लोग इस तरह का कौम है कि हम वो कहते हैं जब सुनामी गुजर जाता है सर पे से तो हम फिर उसके बाद जागते हैं। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, 60% ऑफ आर यू नो पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इज बियॉन्ड यू नो बिलो 28 और व्हाटएवर 25 ईयर्स की है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब ये पॉपुलेशन एज करेगी, एक बहुत बड़ा चंक करोड़ों लोग दुनिया में जब ये एज करेंगे, तो पाकिस्तान की हेल्थ सिस्टम का क्या हाल होगा, हमारी ओल्ड एज के ऊपर जो है और जो यहाँ बीमारियाँ हैं उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक मतलब हमें चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। और ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स हमारी जो एवरेज लाइफ स्पैन है पाकिस्तान की वो इम्प्रूव हो गई है क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हुई हैं। तो जब आपकी एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गई है, अब आप ज़्यादा जी रहे हैं, तो आपके हमारे यहाँ भी अब आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा आदमी आपको कहेगा हाँ जी मेरे घर में अल्जाइमर्स है। तो अब वो मसले मसाइल हमें भी इम्पेक्ट करना शुरू हो गए। जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन वहाँ पर तो अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट। ये आपको पता है कि G8 कंट्रीज़ थे जो दुनिया के 8 बड़े ममालिक हैं, उनकी एक स्पेशल मीटिंग हुई जो सिर्फ डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के ऊपर हुई, और वो बेसिकली ये था कि हमने इसको कैसे डील करना है, बिकॉज जो जो लुकिंग आफ्टर अ डिमेंशिया पेशेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी यू नो बर्डनसम ऑन ऑन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। आपको पता है वहाँ पर तो फ्री सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में आपने सर्विसेज तमाम फ्री देनी है। तो जो डिमेंशिया का पेशेंट है वो ही लिव्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल 10 साल इससे ज़्यादा भी वो जिंदा रहते हैं, और वो टोटल का टोटल जो है ना डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन द सिस्टम। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट है ऑफ लुकिंग आफ्टर डिमेंशिया वो बहुत ज़्यादा है। वेस्ट में कॉस्ट है इस वक्त तकरीबन 1.3 trillion US dollars. So if dementia was a country, it would have been the 18th largest country in the world. So इतनी बड़ी है जो इसके numbers हैं वो बहुत rapidly दुनिया में भी बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। दुनिया में कहते हैं कि जी every 3 seconds there is a new case of dementia. और यानी अगर आप उसको figures में देखें तो 10 million 1 crore लोग हर साल नए patient जो हैं वो existing pool के अंदर add हो जाते हैं। पाकिस्तान में आप जैसे कहा कि हमारे यहाँ भी एज का होना शुरू हो गया है, तो पाकिस्तान में हमारे पास तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, और जो आगे जो तनासुब हमारे यहाँ मुल्क में बढ़ने का है वो तकरीबन 260% इंक्रीज़ होगा, रैपिडली इंक्रीज़ होगा इनटू आवर पॉपुलेशन। तो ये अब पहले था कि ये बाहर का मसला है, अब ये वेरी मच इट्स आर ओन प्रॉब्लम एज वेल।
1: राइट right. जैसे आपने फरमाया कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो डेफिनेटली हमें उस पर लोगों को अवेयरनेस देने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल दिन ब दिन अनहेल्दी ही होता जा रहा है हेल्दी होने की बजाय, स्पेशली हमारी जो यूथ है, क्योंकि एक लार्ज चंक हमारा पॉपुलेशन का यूथ पे कंसिस्ट करता है, तो उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वेरी राइट. तो उसमें सर अल्जाइमर्स पाकिस्तान हमारा जो है ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर इस हवाले से?
2: जी अल्जाइमर्स पाकिस्तान में हम एक हम एक रेंज ऑफ सर्विसेज करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, बी इट द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर, जहां पर डिमेंशियल अल्जाइमर्स के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. तो हम बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, हम एक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, और इस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज मौका दिया. आपके जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, यू आर द लार्जेस्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया. आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगेगा. इसके साथ साथ हम ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं, हम वी आर वर्किंग टूवर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स. जैसे मेरे दादा का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, वी डोंट वॉन्ट कि ये दूसरे लोगों के साथ भी हो, तो हम उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कि दे शुड बी एबल टू डायग्नोज एंड मैनेज डिमेंशिया. इसके साथ साथ हम जो फैमिलीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. जिस तरह मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता था, अभी भी एक बहुत बड़ा हमारे जो लोग हैं जिनको डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के बारे में नहीं पता, तो आप इमेजिन करें जब उनके यहाँ होता होगा तो वो तो पता नहीं कभी सोचते होंगे ये पागल हो गए हैं, कोई सोचता होगा कि जिन आ गए हैं, कुछ आ गया होगा. तो वो बहुत मसला है. और मैंने आपको बताया कि सर वो 5-6 कागज़ों ने हर चीज़ चेंज कर दी, तो वो ट्रेनिंग ऑफ दोज केयर गिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे अंडरस्टैंड कि ये बीमारी क्या है और इनका कैसे लुक आफ्टर करना है. बिकॉज अगर वो हो तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की वो बहुत ट्रमेंडसली इम्प्रूव हो जाती है. ये हम काम कर रहे हैं. उसके साथ साथ हम डे केयर सेंटर रन करते हैं, जहां ये पेशेंट जो हैं वो आते हैं, वो सारा दिन एक हेल्दी वो गुजारते हैं, और उनकी ओवरऑल हम कॉग्निटिव फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं. मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं, मेरे दादा को उनके हाथ ऐसे मुड़ गए थे, तो मैंने बाहर कहीं कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, मैंने उनसे डॉक्टर से बहुत बड़ी थी उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनको एट्रोफीज़ हो गई हैं बिकॉज ही इज़ नॉट यूजिंग हिज लिम्स, अपने इनको जोड़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जी इनके वहाँ डे केयर सेंटर आपको खोलना चाहिए, सो दैट ही गोज़ देयर, ही स्पेंड्स अ फुल डे देयर, वहाँ एक एक्टिविटी हो, जहनी भी जो जितनी उनकी सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करते रहें, और फिज़िकल वो हो, और जब वो घर वापस आएँ तो वो थकें और आराम से सो जाएँ. और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात बताऊं कि मरीज़ तो शायद उसको तो शायद इतना पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रही है, जो असल इम्पैक्ट बीमारी का है शायद वो उस केयर गिवर के ऊपर आता है. तो आप मिसाल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर मेरी मिसाल के तौर पर वालदा घर में है, मेरे दादा हैं, और मेरी अब वो वालदा की जिम्मेदारी लग गई है कि जी बिकॉज ऑफ रिश्ता उन्होंने उनको लुक आफ्टर करना है, तो ऐसे मरीज़ की ना 24/7 आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती है. मसला डर ये होता है कि हो सकता है वो दरवाज़ा खोलें और बाहर चले जाएं और वापसी के भी ना आ सकें, हो सकता है ही गोज़ इनटू द किचन और शी गोज़ इनटू द किचन, जो अगर वो खातून मरीज़ हैं, और अपने आप को इंजर कर लें, आग लगा लें, बाथरूम में जाएँ, लॉक कर लें, बाहर ना आ सकें. तो जो ये मरीज़ होता है उसके ऊपर बहुत एक्सट्रीम इम्पैक्ट होता है. अगर आप जापान में फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी देखें, तो वहाँ स्टडी ये दिखाती है कि जो वहाँ जो केयर गिवर्स है डिमेंशिया के, अल्जाइमर्स के, उनका सुसाइड रेट बहुत हाई है बिकॉज दे कांट कोप अप. आप सोचें ना, अगर आपको 10 मिनट भी अपने लिए नहीं मिल रहे 24 घंटे में, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे. तो ये हम उनके लिए फैमिली केयर गिवर्स के लिए रेस्पाइट भी है डे केयर सेंटर में. इसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे टेलीफोन हेल्पलाइन है, काउंसलिंग सर्विसेज है, तो एक रेंज ऑफ सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं.
1: राइट सर, आपकी सर्विसेज पे मजीद हम डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का. सामीन इकराम, चलते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के लिए. सुनते रहिए यूसीपी की दुनिया FM 92.6.

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स पाकिस्तान से डॉक्टर हुसैन जाफरी साहब से। सर, हम बात कर रहे थे अल्जाइमर्स पाकिस्तान की सर्विसेज के हवाले से, तो उसमें जो केयर गिवर्स, आपने कहा कि उनको रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा, कि जो घरों पर केयर कर रहे हैं, तो आपके पास भी फिर एक बड़ी अच्छी टीम इस हवाले से होगी मेरे ख्याल में अल्जाइमर्स पाकिस्तान में, जो डे केयर में उनकी केयर करती है, उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाती है।
2: जी जी बिल्कुल जी। मैं जो हमने डे केयर सेंटर जब बनाया था, तो हमारी एक यू नो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी तरह की, जो अल्जाइमर्स की, जो अल्जाइमर्स ऑस्ट्रेलिया है, वो उन्होंने हमें हेल्प किया था फाइनेंशियली नहीं, बट उन्होंने अपने मैनेजर्स यहाँ पाकिस्तान भेजे थे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडर्स इन डिमेंशिया केयर। सो दे केम ओवर टू स्पेशली टू पाकिस्तान, और उन्होंने हमारे स्टाफ को ट्रेन किया, और उन्होंने बताया कि जी कैसे इनका ख्याल करना है। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी छोटी छोटी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जिनको हम सोचते ही नहीं हैं कि ये इम्पैक्ट कर सकती हैं। उन्होंने हमें बताया कि कुर्सी कैसी होगी, उसकी कमर कैसी होगी, उसके हाथ के साइड पे होंगे, उसकी सीट कैसी होगी, मेज़ जिसमें बैठना है वो उसकी हाइट कितनी होगी, फर्श जो है उसका रंग कैसा होगा, दीवार का रंग कैसा होगा, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ओवर द ईयर्स डेकेड्स की जो रिसर्च है दे हैव अंडरस्टूड। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि इस आदमी के दिमाग में कितनी इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप डिमेंशिया के पेशेंट को या अल्जाइमर के पेशेंट को डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस से मुराद ये है कि आज वो एक बेटे के घर हैं और वो 3 महीने बाद कहें जी दूसरे बेटे के घर चले जाएंगे, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। उनको अपनी जो फेमिलियर सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर ही रखना चाहिए, ताकि वो जब नई जगह जाते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और वो उनको कन्फ्यूजन होती है, वो इरिटेटेड होते हैं, उनको भी तंग होते हैं और आप भी तंग, मतलब नेचुरली वो मरीज़ भी तंग होता है। तो ये भी एक मैं आपको मशवरा दूंगा कि वो उनको उनकी फेमिलियर सराउंडिंग्स के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। तो डे केयर सेंटर जो है, मैंने बताया कि जी हमारे पास हमारा अपना स्टाफ भी है जो ट्रेन है, और वॉलंटियर्स भी आते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपसे स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे आप क्योंकि यूनिवर्सिटी को आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं डिमेंशिया फ्रेंड्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चाह रहे हैं कि ये बेसिकली यूके सोसाइटी जो हमारी अल्जाइमर्स की है उनका हमने अडॉप्ट किया है, वो वहाँ काम कर रहे हैं डिमेंशिया फ्रेंडली कम्युनिटी के ऊपर। वो चाहते हैं कि जो सारी कम्युनिटी है उन सबको डिमेंशिया अवेयरनेस हो, और सो दैट इफ़ दे सी अ पेशेंट दे शुड बी एबल टू हेल्प देम। तो हमने ये प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू किया है कि हम जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको हमने बेसिकली उसके अंदर 5 मैसेजेस होते हैं, एक लेक्चर होता है वो 40 मिनट्स का, उसके अंदर हमने 5 मैसेजेस उनको पढ़ाने होते हैं, समझाने होते हैं, और पीपल हु अटेंड दैट सेशन बेसिकली देन आर एबल टू, अगर वो कहीं जा रहे हैं, कोई डिमेंशिया का पेशेंट है, तो ही माइट पिक अप कि ये डिमेंशिया के पेशेंट हैं, देन दे वुड ऑल्सो नो कि इनकी हेल्प कैसे करनी है। तो वो हम आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर यूसीपी के तआवुन से आपकी हज़ारों क्लासें होंगी, तो अगर उन क्लासेस क्लास वाइज अगर हम आपके साथ कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकें जहां हम आपके जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेन कर सकें एज डिमेंशिया फ्रेंड्स, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग सर्विस फॉर दिस कंट्री।
1: व्हाई नॉट वी वुड लव टू कोलैबोरेट ऑन दैट एज वेल। सर, बात हो रही थी अल्जाइमर्स फ्रेंड्स के हवाले से, तो ये इंटरनेशनली तो ये आपने बताया कि ऑलरेडी ट्रेंड ये एग्जिस्ट करता है, और उसमें आपकी फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कोई हैं दूसरे इदारों से, ऑस्ट्रेलिया से तो आपने बताया कि आपकी कोलैबोरेशन रही।
2: जी जी, हमारा एक इंटरनेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल। तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो दुनिया की तमाम जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं अल्जाइमर्स की, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल, तो हम भी उनके मेंबर हैं, पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ जब आप सारे एक जगह बैठते हैं, तो आपकी ट्विनिंग प्रोग्राम जो उनके जरिए होते हैं, इस तरह मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया, दैट वाज अ ट्विनिंग प्रोग्राम विद ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर एक डेवलप्ड जो कंट्री था या डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने हमें हेल्प किया इन डेवलपिंग सर्विसेज। तो ये कॉन्स्टेंट प्रोग्राम है। डिमेंशिया फ्रेंड्स प्रोग्राम जो है, ये हमारी कोलैबोरेशन थी जो हमारे इंग्लैंड का जो सोसाइटी है उनका एक स्ट्रक्चर्ड ये प्रोग्राम है, जिसको हमने उनसे लिया है, और हम अब आजकल अपने यहाँ पर इसको रन कर रहे हैं।
1: राइट, दैट्स ग्रेट सर। सर, आप शेयर कर रहे थे इन द ऑफ एयर डिस्कशन कि माशाल्लाह सैलाब के हवाले से भी आपने काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं, थोड़ा सा उस पर भी चाहेंगे, ज़रा रोशनी डालें।
2: जी, सैलाब तो देखें जी, मेरे आई थिंक हर पाकिस्तानी ने, मुझे तो लगता है कि हर पाकिस्तानी में उसमें कंट्रीब्यूट किया, और आई थिंक यही वजह है कि हम कोई क्राइसिस आता है तो हम सारी कौम जो है ना वो सारी इकट्ठी होके हम सारे वी स्टार्ट यू नो हेल्पिंग पीपल। तो ये सैलाब में भी जी हमने अल्लाह का बड़ा शुक्र है राजनपुर में हमने कोई 11 यूनियन काउंसिल्स हमने कि 12 थी मेरे ख्याल में 12 हमने वो पिक की थी, उनकी कोई पॉपुलेशन 8 लाख के करीब बनती थी, तो वहाँ पर हमने फिर वो कोई आई थिंक 1000 के करीब हमने फैमिलीज जो हैं वो अडॉप्ट कर ली थी, और उनको फिर हमने 3 महीने तक वहाँ पर उनको फिर हमने राशन सर्विस प्रोवाइड की, कपड़े वपड़े टेंट्स वो प्रोवाइड किए, और फिर उसके बाद हमने उनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ काम शुरू किया जिसमें उनकी जो ज़मीनें थीं ज़रई ज़मीनें थीं उनको दोबारा काश्त के लिए बनाने के लिए वो हमने उस पर काम किया, बिकॉज जब सैलाब का पानी एक जगह खड़ा हो जाता है तो वो ज़मीन तबाह हो जाती है, उसको दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए वो किया। तो वो एक हमने पूरा 42 फैमिलीज़ जो हैं उनकी जो ज़मीनें थीं उनको हमने दोबारा करके दिया, और फिर उसके साथ साथ हमने फिर घर आखिर में उनको बना के दिए क्योंकि घर भी उनके टूट गए थे, तो एक एक कमरे बड़े कमरा साइज़ 15x15 और उसके साथ एक टॉयलेट जो था वो हमने उनको बना के दिया, और हम अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम वहाँ पर मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में जो उनके मसले मसाइल हैं ख़ासतौर पर सैलाब की वजह से वो वहाँ पर उनकी सर्विसेज बहुत डिसरप्ट हुई थी, तो उस पर काम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी अभी चल रहा है, अगले 3-4 महीने तो कम अज़ कम हम वहाँ मज़ीद काम करेंगे
1: जी। एग्जैक्टली सैलाब के बाद तो उन चीज़ों को मैनेज करना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सैलाब तो चला जाता है तबाही फैला के, उसके बाद लोगों को दोबारा उनके पैरों पर खड़ा करना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट जॉब। सर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगु रही जी, एक नई चीज़ के बारे में बहुत से लोगों को पता चला, नहीं तो खैर नहीं इस लिहाज से नहीं कि लोगों को पता नहीं था इस बारे में, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि अल्जाइमर्स डिजीज़ भी कोई डिजीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। डिमेंशिया का नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन अल्जाइमर्स इज समथिंग न्यू फॉर आर पीपल, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते इस बारे में। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट चाहेंगे कि हमारी यूथ के नाम आप कोई पैगाम अगर देना चाहें तो प्लीज़।
2: जी मैं डेफिनेटली आई थिंक यूथ जितनी एनर्जी यूथ के अंदर होती है वो तो किसी इंसान में नहीं होती है, तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है जब यूथ जो हैं खासकर स्टूडेंट्स दे आर एजुकेटेड एज वेल दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड वर्क टूवर्ड्स यू नो हेल्पिंग अदर्स हु आर लेस प्रिविलेज। तो मेरी दरख्वास्त होगी यूथ से कि जी आइए प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, अल्जाइमर्स पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए और हमें हेल्प कीजिए ताकि हम हेल्प कर सकें जो बाकी हमारे जो मुल्क में डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं उनको। तो हमारी वेबसाइट है www.alz.org.pk, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको हमारे नंबर्स भी मिल जाएंगे, सो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड जॉइन आर यू नो कैंपेन टू हेल्प डिमेंशिया पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज़।
1: That's great, sir. So, thank you so much for coming today for our show. और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, as usual आपसे जब भी गुफ्तगू होती है बड़ा मज़ा आता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। Thank you so much for coming, sir.
2: थैंक यू।
1: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है एक पैगाम के साथ, जैसे सर ने भी रिट्रेट किया इसको बार बार कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। हमें आज के दौर में मोबाइल्स ने अपने साथ कन्फाइन कर लिया है और हमें इन कन्फाइनमेंट से निकल कर बाहर के दुनिया से रोशनास होने की ज़रूरत है। एक बार फिर से हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हमारे यूथ को, क्योंकि हमारी एक लार्ज चंक पॉपुलेशन का यूथ पे कंसिस्ट करता है, और अगर ये यूथ हेल्दी एक्टिविटीज़ को नहीं अपनाएगी तो अल्लाह ना करे कल को ये चांसेस बढ़ सकते हैं कि अल्जाइमर्स के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

नमाज से कजा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1,
2: UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौजूद सामईन, जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम एक प्रोग्राम लेके आते हैं FOST के बारे में। आपको इल्म होगा FOST 7 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। आज छठे डिपार्टमेंट की बारी है, लास्ट बट वन, उसको कहते हैं सेकंड लास्ट भी कहते हैं। और हम खुशनसीब हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर शाजिया इम्तियाज नागरा, डॉक्टर नमरा अफजल और उनके साथ डॉक्टर दिलावर हुसैन। हमने कहा कि बराबर का हो जाए ना, मुसावात हो जाए, दो ही मर्द हजरात और दो ही खवातीन हमारी। तो बगैर किसी तवक्कुफ के हम बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की बाकायदगी की तरफ। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाजिया इम्तियाज नागरा से चाहूँगा अपना मुख्तसरन तारुफ करवाए।
4: अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर करार साहब फॉर इनवाइटिंग अस, ताकि हम यहाँ आएँ और अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं वो आप लोगों तक पहुँचा सकें। जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, UCP के ही अंडर था, बट एक सब कैंपस था 2C, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टरवर्ड्स इट शिफ्टेड टू द मेन कैंपस UCP, और यहाँ पे इस वक्त हमारा 7th बैच जो है वो पास आउट हो रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी थोड़ा बात करेंगे कि जो बेसिक साइंसेज हैं उनका ट्रेंड क्योंकि थोड़ा ख़त्म हो रहा है, दैट्स वाई हम चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी प्रोजेक्शन हो।
3: जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगली डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर नमरा अफजल। डॉक्टर साहब, आप पहले अपना तारुफ मुख्तसर करवाइएगा और जहाँ से मैम ने ख़त्म किया वहीं से थोड़ा सा बढ़ाइएगा इसको।
5: जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर नमरा अफजल एंड आई एम सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, UCP। सो जहाँ से मैडम ने आपको जैसा कि बताया है कि जूलॉजी की प्रोजेक्शन और तमाम बेसिक साइंसेस की कुछ क्योंकि थोड़ी सी कम हो रही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन द जो राइट टाइम है वो स्टूडेंट्स को ये अवेयर कर सकें दैट लीविंग द फाउंडेशनल नॉलेज और जो बेसिक साइंसेस हैं उनको अगर हम इग्नोर करेंगे तो आने वाले 5 या 10 सालों में हम किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। तो जूलॉजी प्राइमरली हम समझते हैं इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बट इन casual sense it is much more than that, right? So when we talk about zoology, the general definition yehi hai ki zoology is the study of animals, jo ki mostly students ko pata hota, but zoology is actually the branch of biology that's focus on the structure, function, behavior, distribution of animals and their role in the ecosystem. ज़मीन के ऊपर के कौन से जानवर मौजूद हैं, किस तरह से वो आपके ecosystem का हिस्सा है, और ज़मीन के नीचे भी when we talk about the water, तो लाइफ ऑन लैंड और लाइफ बिलो वाटर ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं इकोसिस्टम के प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए, एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट।

0: हम आज की बात करें या आने वाले 20 सालों की बात करें या पूरी जितनी देर तक दुनिया कायम है।
1: जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसील में बताया डॉक्टर दिलावर हुसैन। अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, मुख्तसर तारुफ करवाने के बाद मजीद बताइएगा जूलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में।
2: थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम है डॉक्टर दिलावर हुसैन। तो मैं भी डिपार्टमेंट जूलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैडम अभी बता रही थी कि आजकल चूँकि बेसिक साइंसेज थोड़े डाउनफॉल में चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूसीबी में जो हमारा डिपार्टमेंट जूलॉजी है, इट इज़ कमिटेड टू इम्पार्ट मोर रिसेंट एंड अपडेटेड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे स्टूडेंट को जो सोसाइटी ओरिएंटेड नीड बेस्ड रिसर्च है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एकेडमी और इंडस्ट्री लिंकेज के ऊपर हमने बहुत काम किया है। हमने अपने जो इंडस्ट्री के साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है जिसके अंदर पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट है, पंजाब का वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है और बहुत सारे सेरिकल्चर का, एपिकल्चर का डिपार्टमेंट, उनके साथ हमारे जो लिंकेज हैं वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं। इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट को क्लासरूम तक उनको नहीं रखते, उनको बियॉन्ड द क्लासरूम डिफरेंट हम जो सेमिनार्स और जो वर्कशॉप उनके लिए कंडक्ट करते हैं ताकि वो जो रिसेंट और अप टू डेट जो नॉलेज है जूलॉजी का उनको वो हम दे सकें और उनको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ग्रेजुएट है वो हम प्रोड्यूस कर सकें।
1: जी बहुत शुक्रिया। हमें यकीनन आप महसूस हो रहे होंगे और आप तक मालूमात भी पहुँच रही होंगी। डॉक्टर शाजिया नागरा की तरफ फिर मैं बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके डिपार्टमेंट में जूलॉजी में जो पढ़ाने का अंदाज़ है, जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, उसमें क्या चीज़ डिफरेंट है बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले में?
3: जी सर, जैसे हम बात करते हैं कि जूलॉजी की पहले इम्पोर्टेंस की, जैसे निम्रा ने बात की है, एनिमल्स, प्लांट्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड। अगर प्लांट्स नहीं हैं तो एनिमल्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और अगर एनिमल्स नहीं हैं तो फिर प्लांट्स का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी, छोटी सी शहद की मक्खी है, अगर हम उसको देखें, हनी भी अगर नहीं होती है इस दुनिया में तो ये सर्वाइवल हमारा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनेशन जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हनी बी। और अगर ये प्लांट्स नहीं हैं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। अब आगे बढ़ती हूँ आपके सवाल की तरफ। आपने बात की कि हमारे डिपार्टमेंट में जो पढ़ाने का स्टाइल है या क्या चीज़ डिफरेंट है। एक्चुअली हम एक्टिविटी बेस्ड काम भी करवा रहे हैं। वी टेक आवर स्टूडेंट्स आउट टू द डिफरेंट एनिमल हाउसेज और उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, इन सब में हम उनको लेके जाते हैं सो दैट दे शुड नो अबाउट द फिजियोलॉजी, अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट ऑल द नीड्स व्हिच वी आर बीइंग फुलफिल्ड बाय द एनिमल्स। हमारी जैसे ज़रूरियात की बात करते हैं तो बेसिक नीड हमारी फूड है। फूड के लिए जो रिचेस्ट सोर्स है वो एनिमल्स हैं, जो कि हमारा कहते हैं कि प्रोटीन है, दैट वुड बी द बेसिक नीड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन हमें जो एनिमल सोर्स से मिलती है दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट प्रोटीन। और ये अगर हम एनिमल्स को केटर नहीं करेंगे, अगर हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम इन सारी जो सहूलियात हैं या जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए फिर यही कॉन्सिक्वेंसेस जो आजकल हम फेस कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल सोर्सेज और हमें मस्नूई तरीकों से अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए हम ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं दैट यू शुड फोकस ऑन द बेसिक साइंसेज स्पेसिफिकली विच आर रिलेटेड टू द एनिमल साइंसेज, बिकॉज एनिमल्स जो हैं अगर नहीं है यहाँ इस ज़मीन के ऊपर तो नेचर ने हमारे लिए ही प्रोड्यूस किए हुए, वी कैन नॉट टेक एनी बेनिफिट फ्रॉम दोज इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चर, फंक्शन, वट एवर देयर इज़, जो कि हम सिर्फ जूलॉजी में ही पढ़ सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया तफसील से बताने का। डॉक्टर निम्रा अफजल, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया। मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि हम आगे बढ़ें, आप उसी को थोड़ा सा मजीद बिलमूम जो सुनने वाले होते हैं ना कॉमनर्स के लिए, इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा बताया।
4: जी, इकोसिस्टम जैसे हम बात करते हैं, एक इकोसिस्टम की जो टर्म है ये बड़ी रिलेटिव सी एक टर्म है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, तो फ्रॉम द बेसिक पॉइंट कि अगर एक छोटा सा तालाब है उससे शुरू होता है और आप इसको जब بگر پراسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ ایکو اسفیئرس کی بات کرتے ہیں, ایکو زونس کی بات کرتے ہیں. سو ایکو سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیونگ آرگنیزمس اور آپ کے جو نان لیونگ آرگنیزمس ہیں, اے بایوٹک جس کو ہم سائنس کی زبان میں بایوٹک اینڈ اے بایوٹک فیکٹرس کہتے ہیں, ان کی انٹریکشن کا نام ہے. کیسے آرگنیزمس ایک سرٹن پلیس میں آپس میں رہتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جو ایک ہی ایکو سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے کیا کیا رولس پلے کرتے ہیں, دیٹ میکس این ایکو سسٹم. جیسے آپ کی یہ ٹرم بہت ریلیٹیو ہے, بزنس اسٹڈیز میں بھی یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل وین وی سے کہ بزنس کے ایکو سسٹم میں ہمارے ہر ایک جو کمپنی میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ایک سرٹن رول ہوتا ہے, رائٹ, اینڈ دین دے میک اے بگر کمپنی. سو دس از ہاؤ دا لائف ورکس نا, ویئر دا آرگنیزمس آئیدر دے آر لیونگ آرگنیزمس اور ان کے ساتھ جو اے بایوٹک فیکٹرز ہیں جیسے آپ کی ہوا ہے, پانی ہے, پھر آرگنیزمس کا آپس میں انٹریکشن ہے, دین دے میک اے ہول آف دا سسٹم ورک جس سے آپ کی دنیا, آپ کی کائنات کام کر رہی ہے. سو دیٹ میکس این ایکو سسٹم. سو وین وی آر ناٹ اویئر ود دا رول آف آرگنیزمس اینڈ دیئر انٹریکشن, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس ایکو سسٹم کو بچا ہی نہیں سکتے. زولوجی کمز ہیئر وے وی ایکچولی لرن دا انٹریکشن بٹوین دا آرگنیزمس, وچ آرگنیزم از پلئنگ واٹ رول. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دس, یہ نالج جب آئے گا تو پھر آپ اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو اٹیچ کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اے آئی کو اٹیچ کر سکتے ہیں ٹو لرن دا بیسک انٹریکشنز, اور پھر آپ اس پہ الگورتھمز بلڈ کر کے اور ایک بہت بڑا سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن زولوجی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سو اس وقت جب سر ہم دنیا میں بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, آنے والے 10 سالوں میں اے آئی اور آئی ٹی بالکل ریلیونٹ ہوگی, بٹ زولوجی کا فاؤنڈیشنل نالج آپ کو چاہیے ہوگا اس دنیا کو چلانے کے لیے, کیونکہ سب سے اہم ہے زندہ رہنا, اور زندہ رہنے کے لیے اپنی جگہ پہچاننا ضروری ہے.
1: بہت بہت اچھا کہا آپ نے. میں ایک جگہ پڑھا تھا, اس سے قبل کہ ہم پہلی بریک کی طرف جائیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ ڈاکٹر دلاور حسین کے پاس آئیں گے, میں ایک جگہ پڑھا تھا, ٹیک گڈ کیئر آف یور انوائرمنٹ اینڈ یور ارتھ بیکاز دس از دا اونلی پلیس ویئر یو ہیو ٹو لیو. سو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہم ایک وقفہ کی طرف, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर साहब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं?
2: जी सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो डिपार्टमेंट जूलॉजी है अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UC पे जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा BS जूलॉजी प्रोग्राम चल रहा है, 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा MPhil जूलॉजी का 2 ईयर का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है हमारा, उसकी इवनिंग के अंदर क्लासेज हैं। उसके अलावा हमने जो PhD के लिए भी वर्किंग पेपर जो तैयार किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द हम HEC को भेजेंगे फॉर द अप्रूवल ऑफ PhD इन जूलॉजी। एडिशनली हमने 1-2 डिग्री प्रोग्राम उनके ऊपर और वर्किंग जो है वो की हुई है, फॉर एग्जांपल BS इन पब्लिक हेल्थ के ऊपर एंड MS इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैडम भी कह रही थी, आगे ये जो ज़माना आ रहा है, जो करंटली हम फेसिंग कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे UN ने अपने गोल सेट किए हैं, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो अपनी वर्किंग है वो मुकम्मल की हुई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको किसी फॉर्म से, मे बी जूलॉजी और फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसको भी ऑफर करेंगे इंशाल्लाह।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागरा। इसी सवाल को आपकी तरफ बढ़ाऊँगा, आप भी बताएंगी मजीद कुछ प्रोग्राम्स की, मजीद आप एलुसिडेट करेंगी, इनको मजीद फैलाएंगी।
3: जी सर, जैसे BS जूलॉजी प्रोग्राम की बात हुई है, तो ये हमारा 8 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को एनिमल बिहेवियर, एनिमल डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, अलॉन्ग विद दैट माइक्रोबायोलॉजी एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, जिसमें इकोनॉमिक जूलॉजी भी आ जाती है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज भी आ जाती है, वाइल्ड लाइफ भी है और इकोलॉजी है। तो ये सब प्रोग्राम्स, ये सब सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकली एनिमल्स। लेकिन उसमें मैं ये ऐड करती चलूँ कि एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेटा, तो हम एज रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हम ह्यूमन बींग्स को ही डिस्कस करते हैं। और जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे फिजियोलॉजी को पर्टिकुलरली अगर ले लें, तो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी, वट एवर, जो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा जो रोल है, रोल मॉडल है उसके अंदर, वो हम एक ह्यूमन बींग के ही सारे सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट MPhil जो हमारा प्रोग्राम इवनिंग में चल रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे स्पेशलाइजेशन वाले प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर हो रहे हैं, जिसमें बच्चे रिसर्च तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका कोर्स वर्क है वो 1-2 सेमेस्टर्स में दे हैव टू कम्प्लीट दैट। और उस कोर्स वर्क में उनके जैसे एपिडेमियोलॉजी है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंसेज है, एडवांस कैंसर बायोलॉजी है, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी है एंड डिफरेंट अदर टेक्निक्स और सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। और जब वो रिसर्च अपनी करते हैं, तो दे डिज़ाइन देयर प्रोजेक्ट्स इन सच अ वे कि हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके जो एरियाज हैं स्पेशलाइजेशन के, वो उनके साथ रिलेट करते हैं। एंड दिस इज़ देयर ओन चॉइस, स्टूडेंट अपनी चॉइस के साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। एंड UCP और उसके साथ साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उनको फुली सपोर्ट करता है फॉर द रिसर्च वर्क, फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच दे आर रिक्वायरिंग।
1: थैंक यू वेरी मच मैम निमरा अफजल। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने मुझे एक और सवाल दे दिया, ज़िमनी सवाल निकल आया कि इन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन, पहले अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइएगा और किस तरीके से आप अपने MPhil के बच्चों को अपने फील्ड में लेके आगे चलती हैं, ताकि जब वो बाहर जाएं दुनिया में तो वो उड़ना सीख जाए।
4: जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है पूछा है। सो मैं सर अगर अपनी बात करूँ, तो आई एम स्पेशलाइज्ड इन एनवायरमेंटल हेल्थ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ, तो आपको पता है कि जो एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली एयर, सॉइल और वाटर आर द मेन कंपोनेंट्स। और इसके लिए फिर मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, सो आई वर्क फॉर द एयर, फॉर द सॉइल एंड फॉर द वाटर। सो वट वी एक्चुअली, मेरे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मेरे साथ रिसर्च करते हैं, तो जैसे अभी मैं आपको चंद एक अपने रिसर्च टॉपिक्स ज़रा आम जुबान में बताऊँ जो आम फहम हो, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है कि प्लास्टिक्स का हमारा यूजेज का बहुत मसला चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया है। लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं
1: सर? साइक्लिंग भी उसमें आती है?
4: जी सर, उसके लिए हम 3 R's की लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो द फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस. तो 3 R's में जब रिड्यूस आ रहा है तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. अब कहीं अगर हम बात करें कहाँ जोलॉजी लोग समझते हैं और कहाँ कहते हैं प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन सर ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी जैसे ये प्लास्टिक जब आपको पता है कि टूट फूट का शिकार नहीं होते, दे डू नॉट डीग्रेड इन नॉर्मल कंडीशंस. सो जब ओवर द ईयर्स, 100 ईयर्स अगर आपका प्लास्टिक रिटेन करता है और अगर उसकी एब्रेशन हो भी रही है तो वो इतनी स्लो है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स में डिसोसिएट हो जाता है और फिर जब वो वाटर बॉडीज से एनिमल्स तक पहुँचता है तो आपकी फ़िश के अंदर बायोकेमुलेट हो रहा है. मैं टर्म्स कुछ ऐसी यूज़ करूँगी जो आम फहम हो कि अगर फ़िश के अंदर या हम अब देखेंगे पाकिस्तान में सी फूड का कितना अब हम लोग जाते हैं, लोग खाते हैं और पसंद करते हैं. जब ये सारी एक्युमुलेशन फिश में, आपके लॉबस्टर्स में लेट्स से हो रही है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो रही हैं. उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी बॉडी आ रही है और फिर आपकी फंक्शनिंग बॉडी की जो है वो अफेक्ट हो रही है, फ्रॉम लिवर फंक्शन टू द रीनल फंक्शन, जिसमें हम किडनीज की बात करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको एनिमल मॉडल्स पर करके देखते हैं. जैसे मेरे स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट एनिमल मॉडल्स पर करके देखते हैं और फिर हम उनके इफेक्ट्स देख के रेजोनेट करना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर भी है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. अगर आप फिश फूड कंज्यूम कर रहे हैं या अगर फिश नहीं, आप कोई भी सी फूड खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज टू दैट माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट. और हमें ये आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में मेरे बाबा भी बताते हैं कि कपड़े के थैले हम लोग लेके चलते थे एंड देट वॉज नॉट अ स्टेटस सिम्बल. एक थैला 1000 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा था, धुलता था, आपका इन्वायरमेंट भी महफूज था. आज हम प्लास्टिक को चाहे कन्वीनियंटली यूज़ करने के चक्कर में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं. सो वट वी are trying to actually assess the repercussions or phir logon ko sensitize karna to reduce the use of plastic and go for the other alternatives whatever we can have. So ye ek ye term hai. Kuch hum smoke pe mere students kaam kar rahe hain, aapko pata hai this is one of the most important issue. To aksar log kehte hain ki ji zoology aur smoke, to the thing is jaise meri zoology ek bahut diverse sir branch hai. So when I talk about environmental health to hum smoke ko bhi dekhte hain ki smoke kis tarah se affect kar raha hai aur उसके अगेन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ये भी लगाते हैं कि एक एनिमल मॉडल को एक्सपोज करके देखें कि स्मोक के क्या इम्पैक्ट्स हैं. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली वर्क, दिस इज़ माय स्पेशलाइजेशन एंड आई विल लीव इट टू रेस्ट ऑफ माय कलीग्स टू यू नो टू डिस्कस देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन.
1: थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी डिटेल्ड ब्रीफिंग. यू पुट एन पर्सन लाइक मी हु इज अ यू नो अ नोविस इन दिस फील्ड वाइजर देन बिफोर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्रीफ. I mean discussion and elucidation and explanation. Dr. Saab, Dr. Dilawar Hussain, आपसे भी यही सवाल करूँगा क्योंकि बात से बात चल पड़ी और दीप से दीप जलते हैं. तो आप भी अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन बताइएगा स्टूडेंट्स के बारे में और उसके बाद ही आपसे ज़िमनी सवाल भी होगा, अपनी लैब्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा. 2 से 3 मिनट आपके पास हैं.
2: जी सर, बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो एक्वा कल्चर एंड फिशरीज़ है, और अगर इसको मैं थोड़ा नैरो रेंज में लेके बात करूँ तो फ़िश न्यूट्रिशन के ऊपर और टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर मेरे जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं. आपको पता है जैसे मैडम बता रही थी कि अभी जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड सी फूड की तरफ, जो कि डैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो उसके अंदर फिर उसकी प्रोडक्शन में कुछ मसाइल आते हैं, जैसे डिजीज़ हैं उसको रजिस्ट करने के लिए. तो उस डिज़ीज़ से कोप करने के लिए फिर उसके ऊपर मेरे जो स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं कि फ़िश के अंदर जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह से कम किया जा सके या उसकी जो ग्रोथ है उसको कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट हैं उनको यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर और लैब के अंदर ट्रायल लगा के देखते हैं कि वो फ़िश के अंदर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी आई है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप. इसी तरह से कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर ताकि हम ये देख सकें कि वो जो ऑयल्स हैं वो किस तरह से जो फ़िश के इम्यून सिस्टम है उसको वो बूस्ट अप करते हैं ताकि वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस दे सकें और फ़िश की जो ग्रोथ है या जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हम उससे ले सकें. उसके बाद सर दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया लैब्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6-7 वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं और वो तमाम स्टूडेंट उसके लिए वो तमाम मौके हैं कि वो किसी भी लैब में जाके ओपनली काम कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी अपनी जूलॉजी की भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिपेंडेंट लेबॉरटरी है जिसके अंदर हमारे जो इस वक्त के इंस्ट्रूमेंट हैं जो चाहिए वो सारे के सारे मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक दो का आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा. जैसे हमारे पास वहाँ पे जूलॉजी लैब में پی سی آر مشین ہے جس کے اوپر ہمارے ایم فل کے اور ایون کے پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے وہ آ کے ورکنگ کر رہے ہیں. سینٹریفیوگیشن مشین ہے ہمارے اوپر ہمارے زوالوجی لیب میں جس کے اوپر اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے جیل ڈاگ ایک آپریٹس ہے, ایگروز جیل وغیرہ جب اسٹوڈنٹ رن کرتے ہیں اس کے اوپر. انکیوبیٹر ہمارے لیب کے اندر موجود ہے, مائکرو ویو اوون وہاں پہ موجود ہے, فلیم فوٹو میٹر ہماری لیب کے اندر زوالوجی لیب کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ -80 کا فریزر جو پورے یو سی پی میں صرف ہماری لیب میں زوالوجی میں موجود ہے, جس کے اندر ہم جو اگر لانگ ٹرم کے لیے ہم اپنے سیمپلس کو سیو کرنا ہو یا کوئی کیمیکل کو رکھنا ہو تو وہاں پہ ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایڈیشنلی اینیمل ہاؤس کی بھی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے, تو ڈاکٹر نمرا اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کریں.
1: بہت شکریہ. اچھا کہ آپ نے, کیونکہ وہ ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, انہیں پہ کروں گا. لیکن آپ جانتے ہیں طوالت بعض اوقات بوریت کا باعث بنتی ہے, اس لیے ہم جائیں گے ایک اور بریک کی طرف. کہیں مچائیے گا, سنتے رہیے FM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम पे दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर बताइएगा, अपने स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से आइंदा आने वाले ज़माने के लिए फॉर द फ्यूचर तैयार करते हैं? सेमिनार्स, विजिट्स, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, आप बताइए इस बारे में।
2: तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट जूलॉजी में रेगुलरली सेमिनार जो वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपको पता है ये जो सेमिनार और ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर, उनकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, उनके न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके कैरियर रेडीनेस के लिए, उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम ईयरली और सीरीज़ ऑफ सेमिनार हमने अरेंज करते हैं, उसमें कुछ को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे नंबर वन के ऊपर हम हर साल वर्ल्ड फिशरीज़ डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर हमारी एक पूरी एक फुल डे की एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम पहले स्टार्ट करते हैं एक अवेयरनेस वॉक के साथ, और उसके बाद हम जो है वो स्पीकर को बुलाते हैं फ्राम दी रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, जैसे पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से हम एक स्पीकर को बुलाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को जो है वो जो करंट इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं एक्वाकल्चर और फिशरीज़ के ऊपर, उसके ऊपर उनको टॉक दे सके। उसके बाद दूसरा, हम वर्ल्ड फिशरीज़ डे को भी सेलिब्रेट करते हैं ईयरली, उसके अंदर भी उसी तरह से हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से लोगों को बुलाते हैं एज इनवाइटेड स्पीकर, और जो इस वक्त की टॉपिक्स हैं जैसे GIS की मैपिंग है, उसके ऊपर बच्चों को हम जो वर्कशॉप्स हैं, जो सेमिनार है वो डिलीवर करवाते हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत सी फेमस टैक्सीडर्मी की वर्कशॉप हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जो कि हम हर साल जो है इसको स्टार्ट करते हैं, बच्चे इसको पूरा सीखते हैं। इसमें हम यही करते हैं कि जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ख़ासतौर पर जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको स्टफिंग सिखाते हैं कि कैसे उसको हमने प्रिजर्व करना है फॉर रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने हमने घर में रखने के लिए, या एज ए शो के पीस के तौर पर, कि वो एनिमल जो बेचारे डेड हो गए बजाय इसके कि वो हम उसको इन्वायरमेंट को ख़राब होने दें, उनके फिर हम क्या करते हैं, स्टफिंग करते हैं। तो ये पूरी एक साइंस है जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। इसके अलावा हम एपिकल्चर के ऊपर, हनी बी फार्मिंग के ऊपर हमारे वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, सेरीकल्चर को हमारी वर्कशॉप है वो हम करवाते हैं, लैग कल्चर के ऊपर लास्ट ईयर हमने एक जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाई थी। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट, हम उनको एक पूरा एक ओवरव्यू देते हैं कि सिर्फ क्लासरूम तक उनको महदूद नहीं रखते, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम उनको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। अभी हम तकरीबन बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। डॉक्टर शाजिया नागरा से पूछूंगा, फिर उसके बाद आखिरी सवाल करूँगा डॉक्टर निमरा अफजल से। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाजिया नागरा साहब, आपसे सवाल है कि why zoology at UCP, why not other universities, what is so special about your department?
3: थैंक यू सर। जैसे अगर हम बात करें कि why zoology at UCP, तो what I can add into this के हमारे पास well established और well equipped labs हैं यहाँ पे। we have almost all the faculty members, they have done their PhDs and of course they are very experienced, और जिस तरीके से वो बच्चों को अपना जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मैं समझती हूं कि हम यहां बहुत मेहनत से बच्चों को ये सारा काम करवा रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर रिसर्च की बात की जाए तो हर एक सुपरवाइज़र बच्चों के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। वी हैव डिस्प्लेड द टाइम टेबल जिसके अंदर हमने अपने प्रॉपर रिसर्च आवर्स रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो फ्राइडे का दिन है वो भी कुछ ऐसा रिसर्च के लिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करें इन सारी चीज़ों को, या एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हमारे पास आते हैं एमफिल के अंदर, दे हैव एक्चुअली टोल्ड अस कि जैसे बीएस पे उन्होंने वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ इंजॉय की हैं, या उन्होंने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे बीएस लेवल के ऊपर भी हम बच्चों को जो प्रोजेक्ट कराते हैं तो प्रॉपर थीसिस लिखते हैं वो, और प्रॉपर रिसर्च करते हैं। जबकि बाकी जगहों से आने वाले बच्चों के से हमें ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है कि वो वहाँ पे बीएस लेवल पे उनको प्रॉपर प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं या नहीं, या उनका कोई रिसर्च का एक्सपोजर है या नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिकमेंड कि अगर बीएस जूलॉजी کرنا ہے تو پھر آپ یو سی پی ہی آئیں, بیکاز اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز آر ہیئر, اور اسپیسیفکلی جتنے ہمارے سارے ایکسپیرئنس قسم کے ٹیچرز ہیں یہاں پہ, وہ بہت کیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایکسل کریں اپنی فیلڈ کے اندر, اور جب یہ باہر نکلیں تو پراؤڈلی دے کین پریزنٹ دیم سیلوز ایز یو سی پی این, اور وہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ چیز لرن کی ہے یہاں سے اور کتنے اچھے طریقے سے لرن کی ہے. سو دس از بیسیکلی دا تھنگ.
1: میں نمرا افضل آپ سے یہی سوال, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل سوال بھی آپ ہی اختتام کروں گا آج کے پروگرام کا. پہلا سوال تو یہی, وائی سو اسپیشل ان یور ڈپارٹمنٹ دیٹ it should be the first choice of all the incoming students, right? And second, you are also holding the portfolio of the research journal of FOST. It just struck my mind. So us pe ikhtitam kijiyega, 2 se 3 minute aapke paas hai.
4: Ji sir, bahut shukriya. Sir, a performance is always evaluated by the indicators, right? So sirf jaise madam ne aapko bataya ki teaching and research excellence, to uske main aapko kuch indicators apne success point bata deti hu. So in our BS program jo bachche hamare research karke yahan se pass out hote hain, they have a number of research publications. Aap ye kahin pe nahi dekhenge ki government universities pe bachche research publications karte hain BS level pe. So I have a complete proof that our BS students are publishing their research in high impact factor journals. So one of my student has actually published almost 20 papers at the level of BS. ہاں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا انٹرسٹڈ ہے, لیکن وی پرووائڈ دیٹ پلیٹ فارم کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یو آر کیپیبل ٹو کنٹریبیوٹ ان دا سائنس. سو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وی ڈو سائنس, سو وی پبلش سائنس, یس ایگزیکٹلی. سو دس از ون آف دا انڈیکیٹر. سیکنڈ انڈیکیٹر از کہ ہمارے بی ایس کے اسٹوڈنٹس, مور دین 15 اسٹوڈنٹس ور سلیکٹڈ فار دا انڈونیشین یونیورسٹیز فار ایم فل. دس از اندر سکسیز پوائنٹ. سو وے وی آر امپارٹنگ a knowledge where we are preparing the students for the international competition for the scholarships and everything like that. So our students are also, you know, studying currently for the master's program in international universities. The third one is we have a faculty that is comparatively young enough and are actually working in the field too, because they have the hunger of success, right? So they are working, they have that motivation to work, and then the students become the, you know, driving power for them, and they work together to make an impact.
1: You very rightly said you are working your heart out,
4: yes,
1: for them. So the last part, that is the journal.
4: Ji. So sir, main managing editor bhi hoon apne hamare faculty of science and technology ka journal hai, UCP JST, journal of science and technology, that is currently holding the status of Y category. HEC approved hai, Y category mein hai, and we started in it in 2022, and now we are looking forward for the X category. And in that particular journal hum log different جو بیسک سائنسز ہیں اور اپلائڈ سائنسز ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں. دس جرنل از آلسو ان کلیبریشن ود دا فیکلٹی آف فارمیسی. سو یہ دو فیکلٹیز جو ہیں دے آر ورکنگ ہارڈ آن دا سائنسز ٹو کانٹریبیوٹ سم تھنگ, اینڈ یہ جرنل جو ہے یہاں پہ ہم پبلش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اس کام کو جو کہ انوویٹو ہے اینڈ یٹ پریکٹیکل ہے. سو آئی انوائٹ فرام دا فورم آف فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو پلیز پٹ یور پیپر forward for your research publications if you want to publish it in a Y category approved journals, so that specifically sir BS ke bachche jo chote project karte hain yet impactful hain, they can contribute to the journal. You are always welcome to contribute.
1: Bahut badi baat hai, very exhaustive explanation given by you. Thank you so very much all of you, Dr. Shazia Imtiaz Nagra, Dr. Namra Afzal, ya Nimra Afzal mujhe maaf kar dijiye ga تلفظ میں اگر غلطی ہو کوتاہی ہو, اور ڈاکٹر دلاور حسین, بہت عمدہ گفتگو رہی. مجھے یہ ماننے میں کوئی باک نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے کہ میں آج یہ چھٹا پروگرام کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ اٹ از ون آف دا موسٹ انٹرٹیننگ اینڈ انلائٹننگ ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ سامعین, ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. آخر میں ہمیشہ پاکستان زندہ.

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6. UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
4: यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया,
4: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए, सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
2: Back in your seat now.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 90

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.